0: का को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाद का वा मौजू को ज़ाहिर करता है, यानी गोचू मोन वा का लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ आपका ऑर्डर। इसके बाद का हिस्सा क्या है बगैर कहे भी वाज़ह है, इसलिए हज़फ कर दिया गया है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं, उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें कायतो मुख्तलिफ चीज़ों में से इंतखाब पूछता है।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: और अब खाने के शौकीन कायतो के मशहूरों का कॉर्नर। आज का मौजू रामेन है।
0: रामेन नूडल्स डिश है। गुंदे हुए आटे की बारीक पट्टियों या नूडल्स को गर्म पानी में उबालकर प्याले में सूप के साथ पेश किया जाता है। इसमें ऊपर से उबले हुए अंडे, गोश्त के पारचे या सब्जियों जैसी टॉपिंग्स डाली जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर चीनी पकवान है, तहम जापान में मुनफरद तब्दीलियों से गुजरने के बाद अब ये जापान की नुमाइंदा डिशों में से एक है।
1: वैसे रामेन कई इकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
0: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज़ दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक या सिर्फ सब्जियों के अज्जा से तैयार करता रामेन भी दस्तयाब है।
1: और अब तो रामेन के नित नए जायके भी दस्तयाब हैं।
0: जी हाँ, बावर्ची नए जायकों की तैयारी जारी रखते हैं। मसलन अब पनीर और गाढ़ी क्रीम के जायके बनाए गए हैं। कई इलाकों में वहाँ के मखसूस अंदाज के रामेन भी हैं। मकामी खानों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद जहाँ भी जाते हैं वहाँ के मकामी जायकों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 4 सितंबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है और सोमवार तक देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को ताज़ा जानकारी हासिल करके सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्णय लेने को कहा जा रहा है। उत्तरी प्रीफेक्चर आओमोरी के आजीगासावा नगर में बृहस्पतिवार देर रात 1 बजे तक के 48 घंटों में 318.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पूरे सितंबर महीने में होने वाली बारिश की ये लगभग दुगुनी मात्रा है। दक्षिण पश्चिमी जापान के खागोशिमा प्रीफेक्चर के अमामी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हुई। खिकाई जिमा द्वीप पर बृहस्पतिवार देर रात 1 बजे तक 1 घंटे में कुल 64.5 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश से प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे निचले इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ सहित उफनती नदियों के प्रति सतर्क रहें। नेपाल चीन सीमा के निकट अचानक आई भीषण बाढ़ के करीब 1 सप्ताह बाद भी नेपाल में बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हैं। वे बिजली घरों में फंसे श्रमिकों की तलाश कर रहे हैं, जहां खबरों के अनुसार कुछ लोगों के जीवित बचे होने की प्रबल संभावना है। नेपाल की आपदा राहत एजेंसी ने बताया है कि आपदा के बाद से 1,259 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 जापानी नागरिकों सहित 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। वहीं चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि उनके यहां 21 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 540 से अधिक लापता हैं। सड़क, बिजली और संचार व्यवस्था में व्यापक व्यवधान के कारण बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। रॉयटर्स के अनुसार विभिन्न पन बिजली घरों में कम से कम 900 लोगों के फंसे होने की आशंका है। नेपाल की सेना के एक बचाव दल ने नावों की मदद से एक संयंत्र से जुड़ी बाढ़ग्रस्त सुरंग में प्रवेश किया, जबकि एक अन्य दल ने सुरंग के भीतर रास्ता साफ करने के लिए एक चट्टान में छेद करके उसमें विस्फोटक रखे। नेपाल चीन सीमा के निकट पिछले महीने आई भीषण बाढ़ और मृदा स्खलन में मारे गए लोगों की पहचान करने के लिए जापान पुलिस के 5 अधिकारियों को नेपाल भेजा जा रहा है। इन अधिकारियों को नेपाल सरकार के अनुरोध पर भेजा जा रहा है। अब तक 1200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 5 जापानी नागरिकों सहित 4,700 से अधिक लोग लापता हैं। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी का कहना है कि उसके 2 अधिकारी और महानगर पुलिस विभाग के 3 अधिकारी इस 5 सदस्यीय दल का हिस्सा होंगे। फिलहाल ये सदस्य मृतकों की पहचान करने सहित अन्य गतिविधियों में शामिल होंगे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो में शुक्रवार को जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले लगभग एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। कुछ समय के लिए येन 155 के आसपास था। बुधवार को येन मजबूत होना शुरू हुआ था जब इसमें 3 येन से अधिक की वृद्धि हुई। अटकलें थीं कि बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि कर सकता है। येन की इस मजबूती के बावजूद बाजार सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को अमरीकी रोजगार रिपोर्ट जारी होने वाली है और इसे देखते हुए विदेशी मुद्रा निवेशक सतर्क हैं। रोजगार आंकड़े अमरीकी मौद्रिक नीति और ब्याज दरों की दिशा के महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। एनएचके को पता चला है कि अगस्त 1945 के अणु बम हमलों के तुरंत बाद हिरोशिमा और नागासाकी को दर्शाते एक वृत्तचित्र में पहले से बड़े फ्रेम वाली छवियां भी शामिल हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम के प्रभाव नामक वृत्तचित्र में सितंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच इन शहरों और अणु बम की विभीषिका झेल चुके लोगों को दर्शाया गया है। इस वृत्तचित्र की धारक हिरोशिमा सिटी सिनेमेटोग्राफिक एंड ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी ने नवीनतम उपकरणों से इस फिल्म की विस्तृत जांच कर पता लगाया कि फिल्म के कई दृश्यों में वर्टिकल फ्रेम अधिक चौड़ा है, जबकि पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दृश्य में हिरोशिमा में एक अणु बम उत्तरजीवी के बारे में बताया गया है कि जूती पहने होने की वजह से उसके पैर की उंगलियां जलने से बच गईं। पहले जारी की गई फुटेज में उंगलियां दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन बड़े फ्रेम में उंगलियां देखी जा सकती हैं। नागासाकी की एक फुटेज को बड़े फ्रेम पर देखने पर लोगों के घावों का इलाज होते देख रहे बच्चों के हाव भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें पूर्व शिरोयामा राष्ट्रीय विद्यालय का अंदरूनी हिस्सा भी पहले से ज्यादा दिखाई दे रहा है। अणु बमबारी के अवशेष के रूप में इस विद्यालय भवन को राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल घोषित किया गया है। अक्टूबर में हिरोशिमा शहर में इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में बृहस्पतिवार को एक समारोह में इग नोबेल पुरस्कार के नए विजेताओं की घोषणा की गई। ये पुरस्कार ऐसे शोध के लिए दिया जाता है जो पहले लोगों को हंसाता है और फिर उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। जापान के दिवंगत शोधकर्ता उन्नो तोकुजी ने 1977 के अपने अध्ययन हाउ टू ब्लो द नोज एन एरोडायनेमिक स्टडी ऑफ द नोज ब्लोइंग के लिए पुरस्कार जीता। उन्नो उत्तरी जापान के होक्काइदो क्षेत्र में असाहिकावा मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानद प्रोफेसर थे। उन्होंने वेग, आयतन और समय जैसे विभिन्न आंकड़ों का अध्ययन करके पता लगाया कि एक बार में एक ही तरफ से नाक साफ करना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इससे नाक साफ करने की गति और ताकत बढ़ती है। उन्होंने ये भी पाया कि कान में दाब परिवर्तन से आमतौर पर कान में संक्रमण नहीं होता। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए नाक को जोर से और देर तक साफ करना बेहतर है। जापान के कई लोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। गौरतलब है कि लगातार 20 वर्षों तक जापान से कोई ना कोई इस पुरस्कार का विजेता रहा है। 10 क्षेत्रों में पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। अन्य विजेताओं ने सांप कब काटता है और प्यारे खतरनाक दोस्त जैसे विषयों पर शोध किया। एक जापानी शोधकर्ता वाले समूह ने तिलचट्टे के दूध का लाभ का विश्लेषण किया। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।